0: Biker Radio.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर.
5: Feel good, lay back, and enjoy the biggest hits through the night on Leica Radio.

0: Breaker Radio. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 0208574 8410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
3: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें। लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk।
4: Serving you through the night and early morning. This is Leica Radio Midlands.

विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे

बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती सनबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची।

जोर ना जुगती छुटाए संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए, धर्म ख

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
3: दिल तो टूट पे किया,
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा।

अपने जमाने का बहुत ही मशहूर गाना लता जी और रफी साहब की आवाज में दो कलियां फिल्म से लिया था, जिसमें रवि का म्यूजिक था, माला सिन्हा और विश्वजीत की फिल्म थी ये। और उससे पहले आपने शराबी फिल्म का गीत सुना बप्पीदा के म्यूजिक पर, अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म। और लीजिए दो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है, वीकेंड की शुरुआत हो गई है। आज है सैटरडे 4 जुलाई, 10:13 हो चुके हैं और आपके ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं जो ये बता रहे हैं कि

0: बोनी कपूर की फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी थी, साथ में अनिल कपूर थे और साथ में थी उर्मिला मातोंडकर। फिल्म की कहानी कुछ अटपटी थी लेकिन लोगों को पसंद आई थी, खासतौर पर श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर दोनों को ही लोगों ने बेहद पसंद किया था। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ। और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: चलिए फिर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप सबको थैंक यू कहते चलें। आज सबसे पहला मैसेज भिजवाया है वियाना से अनिल सोनी जी ने। मिसेस शेख सुन रही हैं, मृदु जी हमारे साथ हैं, रुखसाना अफसल मैनचेस्टर में प्रोग्राम सुन रही हैं, स्वागत है रुखसाना जी आपका। सहर भारत गंगा राम जी, प्रज्ञा अर्जुन, हर्ष हरीश रुदा, प्रीति जी, सुनील कपूर, मोहम्मद यूसुफ मुंबई में सुन रहे हैं प्रोग्राम। कहते हैं स्कूल कॉलेजेस यहाँ बंद हो गए क्योंकि मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, तो अच्छी बात है, कम से कम बारिश से परेशानी तो होती है पर थोड़ी ठंडक भी मिल जाती है क्योंकि मुंबई का मौसम गर्मी में बहुत ह्यूमिड हो जाता है। एनीवेज अब क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जासू जी, महेंद्र जी, तोची जी, शेखर आनंद, हमारे गिरीश जी भारत से, फरीदा जी, हरीश खत्री, मनीषा शाह, अरुणा, रोजी रजीना, ज्योति जी, मिथिल पटेल, नरेंद्र बागिया, थैंक यू राजेश जी, जैस जी, ज्योति एंड वंदना गुप्ता, सभी का धन्यवाद। और मैंने आपसे पूछा था कि रेखा किन की फेवरेट हीरोइन है, तो बहुत सारे साथियों ने जवाब दिया, शेखर आनंद जी कहते हैं कि रेखा अमिताभ बच्चन की फेवरेट है। वो तो है, हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे भी बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनकी फेवरेट है। तो आपको बता दूं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में आज हम रेखा जी को ही याद करने वाले हैं यादें में।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: तो चलिए जितने भी साथी मेरा साथ दे रहे हैं, ये गाना मेरी ओर से आप सबके

0: वैजयंती माला और देवानंद की फिल्म दुनिया से लिया था ये गाना, जिसमें आशा जी और किशोर कुमार की आवाजें थी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
0: सो थैंक यू मोहम्मद अयूब चौहान जी आपके मैसेज के लिए, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू बॉबी जी, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। कहते हैं मेरी भी बहुत फेवरेट है रेखा, तो बिल्कुल आप रेडियो सेट्स के पास ही रहिए, क्योंकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में आज की यादें में हम रेखा को ही याद करने वाले हैं और उन्हीं के बारे में कुछ बातें होंगी, उनके ही कुछ गाने सुनवाऊंगी। थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू वंदना गुटका जी और जितने भी साथी साथ दे रहे हैं, बस साथ देते रहिए।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो आपको याद दिला दे कि हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं और वो भी दुबई, तो साउथ हॉल ट्रेवल के पास जाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ दुबई की अच्छी डील्स चल रही हैं और अब तो दुबई जाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस भी हट चुके हैं, तो जरूर उन्हें फोन कीजिए 0208 574 8410 पर। ये सब है इट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: रफी साहब और लता जी की आवाजों में अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म हसीना मान जाएगी से लिया था ये गाना, जिसमें शशि कपूर थे और साथ में थी बबीता। और आपको बता दें कि ये फिल्म 1968 में आई थी, लेकिन 1999 में एक और हसीना मान जाएगी आई थी, जिसमें बबीता की बेटी करिश्मा कपूर ने काम किया था। यानी कि सेम नाम की दो फिल्में, एक में माँ एक में बेटी, क्या बात है। बॉलीवुड में ऐसा होता रहता है, जनरेशंस की जनरेशन चली आ रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और आजकल तो करिश्मा कपूर इंडियाज बेस्ट डांसर में भी दिखती हैं, और उनके ऊपर क्या गाने पिक्चराइज किए गए, मतलब 90s की फिल्मों में उन्होंने अच्छा काम किया है और फिल्में बहुत अच्छी हैं और उनके गाने खासतौर पर बहुत पसंद है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो फिल्मों से ज्यादा गाने पसंद करती हूँ। फिल्में तो मैंने बहुत ही लिमिटेड देखी होंगी, लेकिन गाने तो मुझे ज्यादातर ऐसा लगता है मुझे कि सब पता है। बाकी आपको भी बहुत नॉलेज है, आप लोग भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। कभी कभी आप भी मुझे ऐसे गाने बताते हैं जो मेरे दिमाग में होता नहीं है, तो मुझे लगता है कि अरे वाह, ये गाना तो इतने दिनों से मैं भूल चुकी थी। सो एनीवेज, हम सब मिलकर ही शो में एंजॉय करते हैं। तो आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, बताते जा रहे हैं, थैंक यू। योगेंद्र जैन जी, क्या बात है, आपने क्या मैसेज लिखा, दिल खुश कर दिया। कहती है, ग्वालियर वाली ऋतु जी को गजक जैसी मीठी सुबह की शुभकामनाएं। पहले ये बताओ योगेंद्र जैन, आप ये कहां से लाते हो, ये बातें आप कहां से लाते हो? जहां से भी लाते हो मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू, स्वागत है आपका।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज ये £1 आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 100.6 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: Back to back hits across the Leica Radio network.
3: Leica Radio.
4: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
5: OMG!
4: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
5: Murder Mystery!
4: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. MKDW.co.uk. Exclusive radio partner Leica Radio.
6: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.

0: अमिताभ बच्चन और जीना तमान की फिल्म थी और इस फिल्म में नीतू सिंह भी थे और इस गाने में अमिताभ और नीतू सिंह की ही जोड़ी थी और इस अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, जीना तमान, अमजद खान ने मिलकर फिल्मों में 80s में, लेट 70s में बहुत धूम मचाई थी। वैसे इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अमजद खान एज ए विलन नहीं आ पाए थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उनकी जगह इस रोल को निभाया था उत्पल दत्त ने। नहीं तो इस फिल्म में भी विलन के रूप में हमें अमजद खान ही नजर आते। एनीवेज, गीतों का सिलसिला चलता जा रहा है। एक मैसेज आया है, रितेश जी कहते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर का आज 5th हैप्पी बर्थडे है और हर नेम इज सराया, तो वही पूरे फैमिली की ओर से सराया आपको हैप्पी वाली बर्थडे, मेरी ओर से भी हैप्पी बर्थडे। और अगला जो गीत है वो है तो गोल्डी ओल्डी, आपकी ओर से आपके नानू या दादू की नाम कर देती हूँ। और ये गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक, न्यूज के उस पार होंगी यादें जिसमें आज आप सबकी फेवरेट और अमिताभ बच्चन की भी फेवरेट, मेरी भी फेवरेट हीरोइन रेखा जी के बारे में होंगी कुछ बातें और उनके गाने भी आपको सुनवाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले आवर में।
1: Are you listening? Leica Radio is now available across Derbyshire on DAB.

0: और अपना नाम रखा रेखा। और कहने वाले कहते हैं कि रेखा का जीवन किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, बेमिसाल खूबसूरती और अपनी कह सकती हूँ रहस्यमय पर्सनैलिटी से दर्शकों तक, दर्शकों के दिलों पर राज किया है। आपको बता दें कि 70s के दशक में रेखा एक बहुत ही शानदार हीरोइन रही हैं। इनके फादर जो थे भानु गणेशन, जेमिनी गणेशन, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार थे और इनकी माँ भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर हीरोइन थी जिनका नाम था पुष्पावली। और ये भी सुनने में आया है कि जब रेखा जी का जन्म हुआ था तो इनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी और बहुत अरसे तक जेमिनी गणेशन ने रेखा को अपना नाम भी नहीं दिया था। और कहने वाले कहते हैं कि बचपन में रेखा जी ने काफी मुसीबतों का सामना किया अपने लुक्स को लेकर और भी बहुत चीजों के बारे में, उन बारे में बात करूंगी। लेकिन फिलहाल जल्दी से आपको हम ये बता दें,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो आज कनाडा और मोरक्को की टीम आपस में भिड़ेंगी और साथ ही साथ एक और मैच होगा पैराग्वे और फ्रांस के बीच में। लेकिन याद दिला दें कि 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस आप ले सकते हैं हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से जब आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203-345-2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
4: This is Leica Radio.

0: रेखा जी और अमिताभ बच्चन की फिल्म से था ये गाना और आज हम रेखा जी को याद करें और अमिताभ बच्चन के साथ उनका गाना ना बजाएं ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। वैसे आपको बता दूं कि रेखा जी ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में की थी। फिल्म आई थी उनकी इशू गुट्टू जो कि एक तेलुगु फिल्म थी और उसके बाद एज ए हीरोइन उनकी पहली फिल्म आई थी सावन भादो जो 1970 में आई थी। और देखिए 70 में वो हीरोइन बनकर आई लेकिन 76 में पहली बार अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात हुई और जानते हैं वो फिल्म कौन सी थी? फिल्म का नाम था दो अनजाने जिसमें प्रेम चोपड़ा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था और बड़ा ही गंदा मतलब विलन वाला रोल था। मैंने देखी है वो फिल्म, अच्छी कहानी थी, सीखने सबक लेने वाली कहानी थी। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन से पहली बार रेखा मिली थी और कहा जाता है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन से मिलने से पहले रेखा अक्सर ही सेट पर लेट आने के लिए जानी जाती थी लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ती करके उन्होंने समय के लिए पाबंद और अनुशासित व्यवहार को सीखा क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत ही पंक्चुअल तब भी थे आज भी हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान है। तो ये दोनों चीज़ रेखा जी को अमिताभ बच्चन में बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इन चीज़ों को अपने जीवन में भी अपनाया और उन्होंने अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद अपनी एक्टिंग को भी गंभीरता से लेना शुरू किया और बस यहीं से उनके अफेयर की अफवाहों की शुरुआत हो गई क्योंकि जब किसी इंसान की इतनी सारी चीज़ें किसी को पसंद आ जाती हैं तो फिर अफवाहें तो उड़नी लाजमी है और वो भी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ना हो कैसे हो सकता है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आज 1 pound आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टका।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 100.61 pounds per gram.
1: Ram Jewellers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Leica Radio. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: खूबसूरत गाना इस फिल्म में रेखा के साथ जितेंद्र थे, और रेखा एक ऐसी हीरोइन रही हैं जिन्होंने अपने जमाने के सारे बड़े हीरोज के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी सुपरहिट फिल्में दी हैं। आज कुछ फिल्मों के गीत मैंने आपको सुनवाए, एक और ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत गीत आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि अक्सर ही हम रेखा जी को देखते हैं वो शादियों में या अवार्ड फंक्शंस में कांजीवरम साड़ी पहन के मांग में सिंदूर लगाए हुए नजर आती हैं, और जब पहली बार वो इस तरह से तैयार शैयार होकर ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहुंची थी तो सब हैरान रह गए थे और सब जानना चाहते थे कि रेखा सिंदूर क्यों लगाती हैं। उन्होंने तब लगाया और आज भी आप देखिए वो किसी भी जगह जाती हैं उनके मांग में सिंदूर लगा रहता है। लोग बातें करते हैं कि किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि हमारे धर्म में भारत में भारतीय महिलाएं अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं, लेकिन जब रेखा जी से पूछा गया तो रेखा जी ने कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने ये कहा कि फैशन में लगा लेती हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो रेखा जी ही जाने।
1: ये है Leica Radio।
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश
3: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल protected.
7: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
8: OMG!
7: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
8: Murder Mystery!
7: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. MKDW.co.uk. Exclusive radio partner. Leica Radio.
9: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
10: Lester Miller is back.
11: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
10: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
11: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
10: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
11: Arts Council England.
12: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
1: The Ritu Sharma Show. Featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

रेखा जी ने इतनी सारी फिल्मों में काम किया और अपने दम पर फिल्में चलाई। कुछ लोगों ने उन्हें लेडी अमिताभ भी कहा, लेकिन लोगों ने जो कहा रेखा ने इसकी परवाह नहीं की, आगे बढ़ती गई। आज बहुत कुछ बातें मैंने उनके बारे में शेयर की। एक और ये गाना बज रहा है, ये गाना होगा आज की यादें का आखिरी गाना। लेकर चलेगा न्यूज तक, मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार।

किशोरदा की आवाज में ये क्लासिक गाना आपने सुना, और उससे पहले मुकेश जी की आवाज में एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल। दोनों ही गाने बहुत खूबसूरत हैं और आप सबने पसंद किया है। इनफैक्ट हमारे गिरीश जी कहते हैं कि एक दिन बिक जाएगा गीत मुझे डेडिकेट कीजिए, तो मैंने ये दोनों गाने आप सभी के नाम पर किए। और ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर, जिसमें ऋतु शर्मा है आपके साथ, और इस आवर में मैं आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स सुनवाती हूँ, और हम खेलते हैं अपना थ्री वर्ड्स गेम भी, जो आज भी होगा। लेकिन सबसे पहले मैं कल की बात करना चाहूंगी। कल मौका मिला मिलने का द लेजेंडरी सिंगर हरिहरन जी से, और इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर। क्या बढ़िया इंसान है, मतलब कोई एक जब बड़ा कलाकार होता है लेकिन उसके साथ साथ इंसान भी अच्छा होता है तो एक बहुत अच्छी बात होती है। नहीं तो कभी कभी कोई लोग बड़े हो जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा गुरूर, थोड़ा सा घमंड आ जाता है, लेकिन हरिहरन जी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इतने प्यारे इंसान हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती। बहुत प्यारी हमने उनके संग फोटो भी खिंचवाई है, जिसे मैंने अपने सोशल मीडिया इंस्टा पर और फेसबुक

0: डाउट हो चुका है और ये भी एक बहुत ही यादगार शो होने वाला है, तो जरूर उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात हो जाए आज के थ्री वर्ड्स गेम की। हमेशा ही बॉलीवुड के किसी एक पॉपुलर गाने से मैं तीन वर्ड्स चुनती हूँ और उन वर्ड्स की मदद से आपको गाना पहचानना होता है। तो आज का जो पहला वर्ड है उसका नाम है फूलों, दूसरा वर्ड है साथी और तीसरा वर्ड है सपनों। कौन सा है ये गाना? किशोर कुमार की आवाज है। 1978 में आई थी ये फिल्म, 78 में आई थी ये फिल्म और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर अपना नंबर भिजवाकर, अपना मैसेज भिजवाकर। लेकिन आपको पहले वर्ड बता दूं, सबसे पहला वर्ड है फूलों, दूसरा वर्ड है साथी और तीसरा वर्ड है सपनों। 1978 की फिल्म, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, किशोर कुमार की आवाज, कौन सा है ये गाना? बताइए इस नंबर पर अपना मैसेज भिजवाकर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो तब तक हम आपको बता दें कि आज 1 पाउंड आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
3: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry.
2: Samara Black Tea, 1 kg, 3.99. Elephant Medium Atta, 25 kg, 14.99. Falcon Brown Sugar, 3 kg, 3.99. Leila Basmati Rice, 10 kg, 11.99. Suhana Khaman Dhokla, 500 gram, 1.99. Falcon Red Lentils, 1.5 kg, 24.399. Parle Jee Multipack Biscuit, 799 gram, 199. Falcon Lemon Juice, 250 ml, 3 for 1. Falcon Cash and Carry,
3: 82 Assistant Street, LE12JU, yeah, Rowlett Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
7: आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ अ लाइफ time. Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
8: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
9: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July.

0: शमशाद बेगम की आवाज में था ये गाना, और शमशाद बेगम ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और इस गाने से जुड़ी एक बात जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं कहीं पढ़ रही थी कि पहले ये गाना जगदीप पर पिक्चराइज किया जाने वाला था। गुरुदत्त सोच रहे थे कि कोई मेल हो जिसके ऊपर ये गीत पिक्चराइज किया जाए, और जगदीप वही सूरमा भोपाली। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि नहीं, अगर किसी फीमेल पर ये गाना पिक्चराइज किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और फिर ये फीमेल पर पिक्चराइज गाना बनाना पड़ेगा। फिर एक गाना लिखा गया जिसे फिर शमशाद बेगम से गवाया गया, और उस फिल्म में कुमकुम को काम दिया गया, और ये गाना कुमकुम की लाइफ का पहला गाना था। फिल्म इंडस्ट्री में इसी गाने से उनकी एंट्री हुई थी। तो ये कुछ बातें थी इस गाने से जुड़ी हुई, आपने सुना जिसे, और शमशाद बेगम इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, आप जानते हैं। और अब शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाते हैं पहला गीत लता जी की आवाज।
1: ये है लाइका रेडियो, फील गुड ट्रैक, ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग, डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरी valley.net.

0: खूबसूरत धुन बनाई है हेमंत कुमार ने। 20 साल बाद 1962 की फिल्म से लिया था ये गाना, विश्वजीत और वहीदा रहमान की फिल्म। और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.
0: मैं ऋतु शर्मा ही हूँ और आप ऋतु शर्मा शो ही सुन रहे हैं। और हमारा थ्री वर्ड्स गेम चल रहा है जिसमें बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी सही जवाब दे दिया है। तो जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम है केश नथवानी जी, योर आंसर इज करेक्ट, स्वाति बेस वाटर से, उल्लास शरफून, फरीद हुसैन जी कराची से, प्रीति बेल्जियम से, दामिनी बेन, कीर्ति जी, नीलेश तन्ना, नरेन पटेल, मनीषा शाह, हाजरा जी, गिरीश जी भारत से, करसन पिंडोरिया सहर, शिवराम जी हैरो से, अयूब चौहान जी, उषा खोड़ा, दिनेश पोपट जी। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं और जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं उनके आंसर सही नहीं है, उन्हें थोड़ा और सोच विचार करना पड़ेगा। तो आप सोचिए जब तक मैं सुनवाती हूँ आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: किशोर कुमार की आवाज में रंगोली फिल्म से था ये गाना और म्यूजिक शंकर जयकिशन का एंड दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट गाना। मतलब मुझे ये गाना सुनकर इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती और यही हाल हमारे लिसनर्स का भी है। तो चलिए जिन्हें भी पसंद है उन सभी को ये गाना डेडिकेट करते हैं। एंड दिव्या जी हैरो से आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे थ्री वर्ड्स गेम का। और आज बहुत सारे साथियों ने गाने को बोला है कि वो गाना है फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। ये गाना नहीं है, आपको कैसे लगा कि ये गाना है? एनीवेज बहुत जल्दी आप जानेंगे कि आज का हमारा थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना कौन सा है, तो तैयार रहिए। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल जी से जो कि हमारे साथ है। हेलो कमल जी।
1: हेलो रितु जी, कैसे हो आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप सुनाए कैसे हैं?
1: बस अभी तो मैं सौरभ ओवरकास्ट ग्राउंड में हूँ मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफर्ड, जो हमारा मेंस का क्रिकेट मैच है इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया। तो मैं आज आई एम अ गेस्ट ऑफ ए कंपनी ऑब्वियसली, तो देखने आया हूँ। बट मोर माय फोकस एंड माय माइंड इज फॉर टुमारो, कि कल को बहुत ही बड़ा मैच है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं। और इंग्लैंड की टीम जो इतनी स्ट्रांग है, अनबीटन है, और होम क्राउड है, और उसके में जो होम कंडीशंस है, तो इट इज गोइंग टू बी थोड़ा सा उनका इज गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ फेवरेबल टू देम। बट ऑस्ट्रेलिया अनबीटन एंड अमेजिंग टीम, वेरी स्ट्रांग टीम, सो मुकाबला तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग मुकाबला विद देम टू टीम्स। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट मैच एंड आई थिंक दे विल बी more than 30,000 people there for tomorrow's final. We are all looking forward and we'll give you all the updates tomorrow from the ground live. So keep on listening Laika Gold and Laika Radio and Kamal Prabhakar Santos. Thank you.
0: Thank you, Kamal ji.
2: Women's Cricket Updates presented by Kamal Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो बताते चलें कि अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथॉल ट्रेवल से कांटेक्ट कीजिए। उनके पास दुबई की बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं, दुबई जाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस भी उठ चुके हैं, तो आप जरूर उनसे कांटेक्ट कीजिए 02085748410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: और अब से थोड़ी ही देर में आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गीत।
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
4: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
5: सीता आज लंका खुद जलाने आई।
6: This July, witness the rise of a new force.
5: Hi boys.
7: What's up?
6: Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
5: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, रोक लो। तो बात कर लो।
6: प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा एंड डायरेक्टेड बाय शिव रावल।
7: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
6: डोंट मिस इंडियाज बिगेस्ट फीमेल लेड एक्शन इवेंट।
7: अब इंडिया अल्फा से डरेगा।
6: Alpha in cinemas now.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
2: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन। New hits on Leica Radio.

0: प्रकाश झा की मल्टी स्टारर फिल्म जिसमें उस जमाने के सभी बड़े स्टार शामिल थे, चाहे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राखी, रेखा और सुपर डुपर विलन भी अमिताभ बच्चन और रंजीत, एंड कमाल का म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का। और यही था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना जिसे ज्यादातर साथियों ने सही सही पहचान लिया। एंतोशी जी, थैंक यू सो मच। आज कुछ गाने आपको बहुत पसंद आए हैं और उन गानों से आपकी यादें जुड़ी थी। तो अक्सर ही ऐसा होता है कि कुछ गाने होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, आप हमारे साथ हमेशा ही देती हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LEICA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 100.61 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
4: Ye hai Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क और अब ऋतु शर्मा का समय हो गया है जाने का, क्योंकि अगला जो गीत है वो हमें लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार लाइका गोल्ड पर अनुराग आपका साथ देंगे। लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आपके साथ होंगी फजीला एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर आपके साथ होंगे नीरज। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कल तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
5: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: ये है
4: LEICA Radio.
6: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
7: OMG!
6: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
7: Murder Mystery!
6: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. NKDW.co.uk. Exclusive radio partner, LEICA Radio.

0: Good afternoon. How are you today? I hope you're well. जहाँ भी रहें, खुश रहें, खैरियत से रहें, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। If you're not feeling too well, get well soon. If you're feeling bit down, come on, cheer up. Life is to live, life is to enjoy. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए गाने चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। आपके मन को भा जाए तो मुझे आपकी तरफ से इशारा चाहिए, और इशारा कैसे कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज स्टूडियो में लिखकर भेज सकते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे आसपास है। वैसे मेरे कहने के पहले ही बहुत सारे मैसेजेस मेरे सामने हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी तरह से अपने मैसेजेस भेजते रहिएगा। अगर मैं आपके नाम रेडियो पर नहीं भी ले पाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको लिखकर जवाब ज़रूर देती हूँ। और बता दूं कि दो गाने आपने सुने बैक टू बैक। पहला गीत फिल्म यशवंत से था, जिसमें कुमार सानू की आवाज़ थी। 1997 में आई थी ये फिल्म। एंड दूसरा गीत मोहम्मद अजीज, सारिका कपूर और उनके साथियों की आवाज़ों में थी। फिल्म का नाम था 20 साल बाद, और 1988 की थी ये फिल्म। सो दोनों गीतों को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो ही गया कुछ चल रहा है प्रोग्राम में, क्या चल रहा है। अगर बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि आप भी अपने दिमाग के घोड़े चलाते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up 226 rupees and 75 paisas today. And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: Right, भी आज के मैचेस के बारे में बता दें कि आज शाम को 6 बजे मैच होने वाला है कनाडा और मोरक्को के बीच में, पैराग्वे एंड फ्रांस के बीच में मैच होगा रात को 10 बजे, एंड कंबोडिया एंड गाना के बीच में मैच हो चुका है एंड 1-0 से जीत गए हैं कोलंबिया। डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स। कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk। सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो।
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
6: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
7: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद, भिन चार मजेदार फ्लेवर्स।
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
8: इफ यू सी समबडी शोइंग एनी ऑफ द साइंस ऑफ अ स्ट्रोक, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू जस्ट डायल 999, यूज द फास्ट टेस्ट।

0: gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: जी हाँ, आप सभी पहचान चुके हैं क्या कॉमन है आज के गीतों में। थैंक यू सो मच आपके मीठे मीठे मीठे मीठे मैसेजेस के लिए। और भाई, किसी ने मेरे से पूछा कि सरिता जी, अगर हरी जी पूछे सरिता क्यों नहीं आई, तो क्या जवाब देंगे? अरे भाई, मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी लेट पहुँचूंगी, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच शेखर जी, आपने कहा है ना, आपने पूछा जा रही है या नहीं जा रही। जा रही हूँ।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: जी हाँ, आप सबने बिल्कुल ठीक पहचाना, सामने इज द वर्ड। एंड आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? मेरा एक सॉर्ट ऑफ फेवरेट गाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है गीत को, भारत भूषण पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, भारत भूषण पर यह गाना पिक्चराइज हुआ। फिल्म का नाम था सुहागन। कौन सा गीत हो सकता है, याद कीजिए, ये मुझे भी बहुत पसंद है। आइए मिलकर सुनते हैं।
2: Like a Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Sarita Sabharwal with your Weekend Classics.

0: भी प्यार में ऐसा ही तो होता है, वो ही नजर आते हैं सामने मेरे सांवरिया। साधना जी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.37, Pakistani rupees 371.55, Sri Lankan rupee 447.73, Bangladeshi taka 164.55, Afghanis 86.70 and US dollars 1.33.
2: Like her radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKER Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 100 पाउंड्स एंड 61 पेंस का एक ग्राम सोना।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio Network, broadcasting across the Midlands.
0: और प्रोग्राम में अब मैं एक ऐसा गीत शामिल करने जा रही हूँ और किसी को याद भी करने जा रही हूँ इस गीत के ज़रिए, और वो हैं भरत व्यास जी। भरत व्यास जी की आज पुण्यतिथि है और उनके बहुत से यादगार गीत हैं। एक गीत मैंने चुना है और जो मेरे आज के मौजू के साथ भी चलता है। ज़रा सामने तो आइए, चलिए। ये गीत भी उन्होंने ही कंपोज किया था और ऐसे बहुत से उन्होंने ही लिखा था, और ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं जिनके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, लेकिन आइए सुनते हैं ये गाना। मोहम्मद रफ़ी साहब एंड लता मंगेशकर जी की आवाज़ है। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। 1957 में आई थी ये फिल्म। विंटेज कोल्ड की है ये प्रोग्राम।

0: अलका याग्निक की आवाज में गाया हुआ ये गीत आपने सुना, और पहले गीत में भी अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाजें थी। वो गीत था फिल्म अंजाम से, माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज हुआ 1994 में, तो 1988 में तेजाब के लिए ये गाना अलका याग्निक जी ने गाया, और किस पर पिक्चराइज हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। सरोज खान साहब, सरोज खान जी को हमने याद किया इन दोनों गीतों के जरिए, जो कि एक जानी मानी कोरियोग्राफर थी। उन्होंने बहुत दफ़ा अवार्ड्स जीते बहुत से गीतों के लिए। जब वी मेट के लिए वन द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफर, वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफर फॉर गुरु, एंड देन इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। देवदास के लिए भी येस आई डू रिमेंबर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट कोरियोग्राफर, एंड नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था देवदास के लिए। Then Lagan ke liye bhi again he won the Filmfare Award for Best Choreographer, and Hum Dil De Chuke Sanam jaisi filmon mein unhone bahut hi achhi tarah se choreograph kiye sabhi ke sabhi gaane, aur specially dance number. Humne unhe yaad kiya unki punya tithi par. Well, kal thi unki death anniversary, and she died in 2020. और काम के ज़रिए इंसान हमेशा याद रखा जाता है। जी हाँ, जैसे हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, तो लोग हमें हमारे जाने के बाद भी याद रखते हैं। तो ऐसे काम करने चाहिए ज़िंदगी में कि हमें दुनिया बाद में भी याद करती रहे। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बता दें आपको कि SBI UK वाले क्या कहना चाह रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भैया आज आपको दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 126 rupees and 75 paisas. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app के जरिए. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: FIFA World Cup 2026 आज शाम को मैच है कनाडा एंड मोरक्को के बीच में, 6 बजे शुरू होगा, एंड आज ही पैराग्वे एंड फ्रांस के बीच में मैच होने वाला है जो रात को 10 बजे शुरू होगा, और कोलंबिया एंड गाना के बीच में मैच हो चुका है। कोलंबिया हैड दे स्कोर वन गोल एंड वो जीत गए। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपको स्कोर बताते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू रैक लॉ वालों के जरिए अगर आप उनसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो इफ़ यू मेंशन लाइका देन यू विल गेट अ फ्री कंसल्टेशन फॉर 15 मिनट्स।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: राइट भी आज के दिन फिल्म रिलीज़ हुई थी, कौन सी वाली, हिंदुस्तान की कसम। ये फिल्म रिलीज़ हुई आज ही रिलीज़ हुई थी हिंदुस्तान की कसम। एक्चुअली हिंदुस्तान की कसम 1 जुलाई 1973 में रिलीज़ हुई थी, एंड आज के दिन रिलीज़ हुई थी फिल्म यादगार। दोनों के गीत मैंने चुने हुए हैं, तो यादगार का मैं गीत आपसे पूछना चाह रही हूँ कि यादगार का कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है। मैंने जो गीत चुना है उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। जिस पथ पे चला वो गीत आपको भी पसंद है तो मुझे ज़रूर

0: क्या, चलिए चलिए याद कीजिए वो दिन जब आपने फिल्म देखी थी 73 में हिंदुस्तान की कसम, और जल्दी से मुझे अपना पैगाम भी पहुंचा दीजिए.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Sarita Sabharwal on

0: भाई सभी ने इसी गीत को ही वोट दिए एंड वत्सला जी ने सिर्फ लिखा था कि दोनों ही गाने प्लीज शामिल कर दें, तो दोनों गीत तो नहीं मैं शामिल कर पाऊंगी आज ही के दिन में, लेकिन आने वाले दिनों में दूसरा गीत भी जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। मन्ना डे साहब की आवाज में गाया हुआ ये गीत था, फिल्म का नाम था हिंदुस्तान की कसम। ये फिल्म 1 जुलाई 1973 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजकुमार और प्रिया राजवंशी ने काम किया था, चेतन आनंद साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और संगीत वन एंड ओनली मदन मोहन जी का संगीत था। उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया। वैसे इसी नाम से हिंदुस्तान की कसम नाम से फिल्म आई थी 1999 में भी, जिसे वीरू देवगन जी ने डायरेक्ट किया था। आप सभी जानते हैं वीरू देवगन किसकी बात कर रही हूँ, अजय देवगन जी के फादर। एंड इस फिल्म की स्क्रीन प्ले एंड प्रोड्यूस भी वीरू देवगन जी ने किया था, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सुष्मिता सेन, बड़े सारे आर्टिस्ट थे इसमें, फरीदा जलाल थी, प्रेम चोपड़ा थे, शक्ति कपूर थे, कादर खान थे। और वो गीत, वो फिल्म रिलीज हुई 23 जुलाई 1999 में। उसी फिल्म का एक गीत आ रहा है, लेकिन पहले बता दूं कि हिंदुस्तान की कसम जो 73 में रिलीज हुई थी उसका जो गीत आपने सुना वो आप तक किसने पहुंचाया?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
0: पता नहीं आपको मेरे बिगेस्ट क्लासिक्स पसंद आ रहे हैं या नहीं, अगर हाँ तो मुझे इशारा चाहिए आपकी तरफ से। एंड दिस इज फ्रॉम द फिल्म हिंदुस्तान की कसम फ्रॉम 1999।

0: और अगर आपको नहीं मालूम तो बता दूं कि इस फिल्म का संगीत सुखविंदर सिंह ने दिया था, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं. उन्होंने बहुत सी फिल्मों में भी संगीत दिया और प्राइवेट एल्बम्स भी उनकी बहुत सारी हैं. ओके, मैं आपको चॉइस दे रही हूँ दो गानों की. एंड फिल्म सेहरा, सेहरा का संगीत रामलाल जी ने बनाया था. रामलाल चौधरी था जिनका नाम, उन्होंने बनाया था. और पंख होते तो उड़ाती, ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है. और दूसरा है तुम तो प्यार हो सजना, ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है. एंड आई कॉन्ट डिसाइड कि कौन सा गाना आप तक पहुंचाऊं. तो जल्दी से मुझे वोट्स दे दीजिए, पता चल जाएगा मुझे कि आपकी पसंद से मेरी पसंद मिलती है या नहीं मिलती है. मीनवाइल आई एम गोइंग टू गो टू मैनचेस्टर वेयर कमल प्रभाकर जी इज वॉचिंग द मैच. हेलो कमल जी, कैसे हैं आप?
1: वेरी गुड श्रीता जी, आप कैसे? ऑल गुड, गुड टू हियर यू एंड ऑब्वियसली द अवर लिसनर्स टुडे. यस, आई एम इन मैनचेस्टर बट नॉट फॉर द लेडीज गेम. आई एम हियर फॉर इंग्लैंड प्लेइंग इंडिया एंड एट द मोमेंट इंग्लैंड इज 119 for 4. बट इट्स ऑल अबाउट टुमारो. प्रिपरेशन इज गोइंग एंड एक्साइटमेंट इज देयर एंड आफ्टर 3.5 weeks वी आर गोइंग टू विटनेस अ फैंटेस्टिक फाइनल. सरिता जी,
0: इंग्लैंड,
1: इंग्लैंड टेकिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया. इंग्लैंड द स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ होम क्राउड एंड दे प्लेइंग very good cricket and they are unbeaten at the moment. And then we've got Australia who are unbeaten but very strong as well. So Sarita ji, the battle is on, the great game is on, the skill will be there, but one winner will pick that lovely cup up tomorrow. I can't wait to see the match and give all the updates to all of our listeners.
0: Ji ji, bilkul bilkul, kal to bahut bada din hai aur Lords mein ho raha hai ye match, to zarur aap wahan honge.
1: Lords mein ho raha hai. Aur Sarita ji, aap bataiye kaun jeetega kal ko?
0: Main kuch nahi keh sakti, England jeetna chahiye.
1: That's right. That's right. I think they got an upper hand.
0: Bilkul.
1: So thank you. Thank you, my dear.
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code Leica10. At participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Leica Radio. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
0: जी हाँ, इसी गीत को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं. थैंक यू एवर सो मच. बड़े प्यार से सुनते हैं और अपनी इनपुट मुझ तक पहुंचाते हैं.

0: ये कॉम्पोजिशन थी रामलाल जी की, जिन्होंने वी शांताराम जी के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, एंड आज उनकी भी पुण्यतिथि है तो आज हमने उन्हें याद किया. रामलाल जी स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट टू म्यूजिक डायरेक्टर राम गांगुली इन पृथ्वी थिएटर, एंड ही वर्क विद गांगुली इन राज कपूर्स आग एज वेल इन 1948. ही प्लेड द फ्लूट एंड शहनाई पार्ट्स इन द सॉन्ग जिंदा हूँ इस तरह की जिंदगी नहीं, देख चांद की ओर उस गीत में भी. सो इनके यादगार गीत प्यार करने का आया ज़माना, आपको याद होगा मुझसे नज़रें मिलाना संभाल के, एंड ये गीत जो आपने अभी अभी सुना, इसके अलावा तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, वाओ ब्यूटीफुल सॉन्ग, जा जा रे तुझे हम जान गए, तुम तो प्यार हो सजना, और एक ही तौर मैंने क्यों किया है फ्रॉम द फिल्म गीत गाया पत्थरों ने, तो मुझे उम्मीद है कि उसे भी आप पसंद करेंगे. आइए अब जरा आगे बढ़ लें.
1: Like Extra Podcast Updates.
0: जी हाँ, राइज इन विमेन क्रिकेट इज द टॉपिक एंड दीप राजा विल बी टॉकिंग अबाउट इट. एंड इसमें डिस्कस किया गया है कि करंट जो क्रिकेटर्स हैं आर चैलेंजिंग स्टेरियोटाइप्स एंड इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट नीड्स टू चेंज टू एनकरेज मोर साउथ एशियन गर्ल्स टू टेक अप क्रिकेट. सो इसके बारे में है, आप जरूर देखिएगा. यू कैन वॉच लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट विच इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
3: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
3: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162-167-225. We're at all protected.
3: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
4: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
3: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
4: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
3: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
4: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
3: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
4: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
1: Leica Radio Network, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासन.
7: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
8: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
9: Lester Miller is back.
10: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
9: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
10: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
9: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
10: Arts Council England.
1: miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक में शमशाद बेगम जी की आवाज हमने शामिल की। इस हफ्ते की हमारी मेहमान रही, साथ दे रहे थे मोहम्मद रफी साहब। उम्मीद करती हूँ मेरा पसंदीदा गीत आपको भी जरूर पसंद आया होगा। और अब बढ़ते हैं हम अगले गीत की तरफ। बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म यादगार से है और डेरी वैली वाले आप तक पहुंचा रहे हैं। यादगार के इस गीत के बारे में बता दूं कि ये फिल्म आज ही के दिन इन 1970 में रिलीज हुई थी, जिसमें काम किसने किया था याद कीजिए, मैं कुछ देर में आपको जरूर बताऊंगी।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी की आवाज में आपने ये गीत सुना जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म यादगार। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इस फिल्म में किसने काम किया था, तो फिल्म में काम किया था नूतन जी ने और साथ में थे मनोज कुमार और इस फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बहुत प्यारी फिल्म थी और ये फिल्म आज ही के दिन 4 जुलाई 1970 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था एस राम शर्मा जी ने। तो उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया। आइए अब आगे बढ़ लें।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: इस गीत के जरिए हमने याद किया किसे, हमने याद किया भरत व्यास जी को। बहुत ही जाने माने वो लेखक थे। उन्होंने बहुत से गीत लिखे, बहुत सी कविताएं लिखी। सारंगा तेरी याद में, तुम्हें जीवन की डोर से बांध लिया है, ऐसे सती सावित्री के गाने, मैं तो जाऊंगी, वी शांताराम जी के साथ उन्होंने बहुत सा काम किया है। एंड दो आंखें बारह हाथ के लिए भी उन्होंने गीत लिखे, दिल का खिलौना है, टूट गया, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, ऐसे बड़े से बहुत सारे यादगार गीत हैं। लेकिन मैंने शामिल किया ये वाला गीत, उम्मीद करती हूँ आपने जरूर इंजॉय किया।
1: This is Leica Radio across the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
5: This July, witness the rise of a new force.
4: Hi boys.
5: What's up? Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shadvari in a high octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
4: Jisse tumse baat karni hai, rok lo. तो बात कर
5: लो। Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal.
6: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
5: Don't miss India's biggest female-led action event.
6: India Alpha से करेगा।
5: Alpha in cinemas now.
7: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybon Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
10: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
11: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/leica या कॉल कीजिए 0203129-9840। TWPays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
13: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
1: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116-471-0697 or sales@leicamedia.co.uk.
14: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: गीत आपने सुना फिल्म नौजवान थी, जिसका संगीत दिया था एसडी बर्मन साहब ने। बहुत प्यारा गीत था। और इसी गीत से इंस्पायर होकर कौन सा गीत और बना, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, दूसरे गीत भी जो मैं शामिल करने जा रही हूँ, चाहे वो रोशन जी का कंपोज किया ममता का गीत हो या फिल्म सागर का गीत हो जिसे आर डी बर्मन साहब ने संगीतबद्ध किया, लेकिन तीनों गीतों में कुछ कॉमन है। और वो क्या है? That's the tune. वो एक दूसरे से इंस्पायर हुए हैं। तो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यस, तीनों गीतों की जो ट्यून है वो सिमिलर है। सुनिएगा जरूर और मुझे बताइए कल के प्रोग्राम में कि यस, आपको ऐसा महसूस हुआ था।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. This is Leica Radio across the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you at this minute kitne paise, 127 rupees and 36 paisas, and Pakistani rupees 371.36. Sri Lankan rupees 447.67, Bangladeshi taka 164.37, Afghanis 87.1, and US dollars 1.33.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: And gold is trading at £100 and 61 pence per.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
4: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: What a beautiful song, सागर किनारे. गाए थे इसे लता मंगेशकर ने और साथ किसने दिया था अपने पहचान लिया होगा किशोर कुमार की आवाज़ थी. स्वर्गीय राहुल देव वर्मन जी ने इस गीत की धुन बनाई थी और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ठंडी हवाएं उस गीत से इंस्पायर होकर जो कि उनके फादर की कॉम्पोजिशन थी उससे ही इंस्पायर होकर ही सागर किनारे भी बना और फिर जो ममता का गीत था रोशन जी ने तैयार किया था रहे ना रहे हम उसका संगीत आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो मीटर एक ही है और ट्यून भी मिलती जुलती है. अगर आपको भी ऐसा लगे तो मुझे बता सकते हैं ज़रूर अपने व्यूज में साथ शेयर कर सकते हैं. अब घड़ी की सुइयां यही बता रही हैं कि सरिता तेरे जाने का टाइम है. यस मैं जाती हूँ तो ये सीट हॉट सीट छोड़ जा रही हूँ सैंडी शाह के लिए जो विंटेज गोल्ड लेकर आपकी सेवा में कुछ ही देर में हाजिर हो जाएंगे आफ्टर द न्यूज़. और लाइक रेडियो पर आप सोनिया की आवाज़ सुन पाएंगे एंड मैनचेस्टर में मैनचेस्टर का प्रोग्राम सुनेंगे. अब सरिता को इजाज़त दीजिए कल फिर मिलते हैं इसी जगह. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. गाते गुनगुनाते चहकते महकते रहिए और लाइका के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम आपका मनोरंजन बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं. यस बाय बाय टेक केयर. ये है लाइका रेडियो.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, auto protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
4: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com. We'll be right back.

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
2: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
3: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: तक एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
3: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
5: Punjab, the biggest tunes, none.

0: Maker Radio.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्ट। Save the date, Friday 3rd to Sunday the 5th of July, and Indian summer is back.
3: Presented by Inspirate, exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
2: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
3: Or sales at leicamedia.co.uk.
4: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
7: Four beers, please, garçon!
6: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.com.

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।